गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मच पै आले, गावन तुदनो रतनो पाए तेरे, अठ सठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनो गावन, से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती, कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता आपना, जो तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहू साहापत साहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोय, केवड़ वड्डा डीठा होय, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोय न जाने तेरा केता केवड़ चीरा, रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वड्याइयां, तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख, सो क्यों विसरै मेरी माय, साचा साहिब साचे नाय, रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए, ना उह मरै न होवै सोग, देदा रहै न चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोय, ना को हुआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात, खसम विसारह ते कमजात, नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरा।

तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जानाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेत समूढ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काव हो, आप हाथ दै मुहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संगरिय।

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझू करे अहो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

हमारा जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, चेते बदन सृष्ट सब तारै,

अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताको करपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकरी कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्द

जिसका सबस आधारु। जेकु खावे जेकु पुंचे तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला।

गुर नाउ सतगुर सेती रत्या दरगह पाइय ठाऊ कहो नानक किरपा करे जिसनु एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है।

कोरी जबद मैल राज करेगा खालसा की है ना को पार ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज चढ़े दो तेरे पा जो शरदा कर।

सुनिहार सत्रियाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

तन्मई दुरे जा वाहिगुरु जी का शुकराना कर दे गुरु घर वास्ते तिल फुल भेटवा हाजिर कर देने जी होर जो जो माई भाई आप जी दियां बख्शियां दातों विचों तिल फुल भेटवा लेके

जब लो नहीं भाग ले लारी उदय तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र।

जय कर कीरत आखी ऐ करते कहो ए बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सिरजन हारो तुम गावो मेरे निर्भउ का सोहेला हों वारी जित सोहेलै सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभाली देखेगा देवनहार तेरा दाना कीमत ना पवै तिस दाते कौन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असी सड़िया जो वै साहिब सिउ मेल घर घर एहो पाहो चा सदड़े नित पवन सजन हारा सिमरी ऐ नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत हुए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा थिती वारी माओ हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सकल बन राय उलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत तेरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंद बिन सहस्तव गंद इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दय चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लो प्रित मनो अंध नो मोहे आही प्यासा कृपा जाल देह नानक सारंग कहो जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु

ज्यों ज्यों चले चुपै दुख पावे जम काल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पवखंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे।

0: वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु खालसा सतसंगत जी, आप जी सारे ही तंता दे योग हो जो अमृत वेले सतगुरु जी दियां हाजरियां भरियां ने। सतगुरु जी रहमत करन सभना दियां हाजरियां दर प्रवान करके दरों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दियां दातां दे के सतगुरु जी निवाजण। अज सतगुरु जी ने पावन तख्तां ते प्रकाश मन हो करके जो हुक्मनामे साडी झोली दे विच पाए ने, राग सूही दे विच चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जिया की पावन रसना तो उच्चारण किया होया ये पावन शब्द जो लावां दे रूप विच सतगुरु जी ने अंकित किया है। सतगुरु जी दे पावन अंग 773 और 774 दे उत्ते सुभायमान है जी। सतगुरु जी रहमत करन इन्हां पावन हुक्मां अनुसार सानू जीवन जाच बख्शिश करदे होए इस जीवन नूं सफलिया कर देण, तां जो लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो जावे। हुण समा होया है सब तो पहला श्री सुखमणी साहिब जी दे जाप संगती रूप दे विच कीते जाणगे, उस तो उपरंत नितनेम दियां पंजां बाणियां दे पाठ होणगे। सतगुरु जी कृपा करन शुद्ध बाणी एकाग्रता दे सहित पढ़न दी दात बख्शिश कर देण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां सलोक एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आदगुर ए नमै जुगाद गुर सतगुर ए नमै श्री गुरदेव नमै अष्टपदी। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो
1: कल क्लेश तन माय मिटाओ।
0: सिमराओ जास विसंबर एकै
1: नाम जपते अगणत अनेकै।
0: वेद पुराण सिमरत सो दाखियर
1: किले राम नाम के अखर
0: किनका एक जस जी बसावै।
1: कांखी महिमा गनी ना आवै
0: कांखी एकै दर्श तुहारो
1: नानक उन संग मोय उधारो।
0: सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम
1: भक्त जना के मन विश्राम रहाओ।
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन भउ ना व्यापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग प्रभ कै सिमरन रिद सिद नाउ नित। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला से सिमरै जिन आप सिमराए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए।
1: अमृत नाम हृदय माए समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना।
1: नानक जन गादा संदसना
0: प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से जन परवान
1: प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान
0: प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे
1: प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे।
0: प्रभ को सिमरै से सुखवासी
1: प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी।
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगै रवाला।
0: प्रभ को सिमरै से पर उपकारी
1: प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी।
0: प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे
1: प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे।
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता
1: प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता।
0: प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे
1: प्रभ को सिमरै बसे हर मेरे।
0: संत कृपा ते अन दिन जाग
1: नानक सिमरन पूरा भाग
0: प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे
1: प्रभ कै सिमरन कबूल
2: न जुड़े।
0: प्रभु कह सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु कह सिमरन सहज समानी,
0: प्रभु कह सिमरन निःचल आसन,
1: प्रभु कह सिमरन कमल विगासन,
0: प्रभु कह सिमरन अनहद झुनकार,
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार।
0: सिमरै से जन जिन को प्रभु मया,
1: नानक दिन जन चरणी पया।
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच चोह कोट जाते।
0: हर सिमरन तहारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन की ओ सगल अकारा,
1: हर सिमरन मह आप निरंकारा।
0: कर कृपा जिस आप बुझाया,
1: नानक गुरमुख हर।

0: अष्टपदी
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
0: हर शास्त्र सिमरत वख्यान
1: योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
0: सकल त्याग बन मध्य फिरिया
1: अनेक प्रकार किए बहु जतना
0: पूर्ण दान होमे बहु रत्ना
1: शरीर कटाए होमे घर राती
0: वर्त नेम करे बहु पाती
1: नहीं तुल राम नाम विचार
0: नानक गुरु मुख नाम जपिए एक बार
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
0: महा उदास तपी सरथी वै
1: अग्न माहे हो मत प्राण
0: कनक अश्व है वरकुम दान
1: नियुली कर्म करे बहु आसन
0: जैन मार्ग संयम अत साधन
1: निमुख निमुख कर शरीर कटावे
0: कौ पी हो मैं मैल न जावे
1: हर के नाम समसर कृष्ण है
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
1: मन कामना तीर्थ देह छुटे
0: गर्भ गुमान न मन ते हुटे
1: सोच करे दिन सर रात
0: मन की मैल न तन ते जात
1: देही को बहु साधना करे
0: मन ते कबहु न बिखिया टरे
1: जल तो वह बहु देह अनीत
0: शुद्ध कहाँ होए काची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पतत बहुमूच
1: बहुत स्याणप जम का पौ व्याप
0: अनेक जतन कर त्रिशन न त्रापे
1: एक अनेक अगन नहीं बुझे
0: कोट उपाव दरगह नहीं सिजे
1: छूट सुनाही उपयाल
0: मोहे व्याप माया जाल
1: अवर करतूत सगली जम डान
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान
1: हर का नाम जपत दुख जाए
0: नानक बोले सहज सुभाए
1: चार पदार्थ जे को मांगे
0: साध जना की सेवा लागे
1: जे को अपना दुख मिटावे
0: हर हर नाम हृदय सद गावे
1: जे को अपनी शोभा लोरे
0: साध संग ए हो मैं शोरे
1: जे को जन्म मरण ते डरे
0: साध जना की सरनी पर
1: जिस जन को प्रभु प्यासा
0: नानक तक बल बल जासा
1: सगल पुरख मह पुरख प्रधान
0: साध संग जाका मिटाए अभिमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो गनिये सब ते ऊंचा
1: जाका मन होए सगल कीरीना
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: देख सगल श्रेष्ठ साजना
1: सुख दुख जन सम दृष्टिता
0: नानक पाप पुन नहीं ले पा
1: धन को तन तेरो नाओ
0: निथावे को नाओ तेरा थाओ
1: निमाने को प्रभु देव तेरो मान
0: सगल कटा को देवा दान
1: करन करावन हार स्वामी
0: सगल कटा के अंतर जामी
1: अपनी गत मित जन हो आपे
0: अपन संग आप प्रभ राते
1: उस तुमरी उस्तद तुम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया
0: साध संग दुर्मत मल हिरिया
1: सगल उद्दम मह उद्दम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल वाणी मह अमृत वाणी
0: हर को जस सुन रसन बखानी
1: सगल तान ते ओ उत्तम धान
0: नानक जिहे काट वसाय।

0: अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने
1: कवन मूर्ते कवन निशाने
0: जिन तों साज सवार सिंगारिया
1: गगन में जिने वारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध
1: पर जो गुण भोजन सुख सूद
0: बिरद भया ऊपर साख सैन
1: मुख प्याऊ बैठ को दैन
0: इहो निर्गुण गुण कछु न बूझे
1: मुख लियो तर नानक सीजे
0: जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै
1: सुत प्रहाद मीत बनता समरस
0: जे प्रसाद पी वैसी तल जला
1: सुखदाई पवन पाव कुमला
0: जे प्रसाद भोगै सब रसा
1: समुद्री संग साल रसा
0: दीने हस्त पाव करन ने तर रसना
1: त्याग और समरचना
0: ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे
1: नानक काट लियो प्रभु आपे
0: आद अंत जो रखन हार
1: इस्यो प्रीत न करे गवार
0: जाति सेवा नवनिध पावै
1: दासो मूड़ा मन नहीं लावै
0: जो ठाकुर सद सदा हजूरे
1: को जान दूरे
0: जाति टहल पावे दरगह मान
1: सारे मुगद जान
0: सदा सदा ए भूलन हार
1: नानक राखन हार पार
0: रतन त्याग कौटी संग रचै
1: झूठ संग मचै
0: जो छड़ना सो अस थिर कर मान है।

0: जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे।
1: जिस ठाकुर को रख मन माहे,
0: जेह प्रसाद सुगंध तन लावे,
1: तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जेह प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: तिसे तिहाए सदा मन अंदर।
0: जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना,
1: आठ पहर सिमरौ तिस रसना।
0: जेह प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा तिहाइय त्यावन जोग।
0: जेह प्रसाद पाठ पटंबर हनावे,
1: तिसे त्याग कत अवर लुभावे।
0: जेह प्रसाद सुख से सोई जय,
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय।
0: जेह प्रसाद तुझ सबको माने,
1: मुख ताको जस रसन बखाना।
0: जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म,
1: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
0: सब जी जब दरगह मान भावे,
1: नानक पात से ती कर जावे।
0: जेह प्रसाद आरोग कंचन देही,
1: लिव लावो तिस राम स्नेही।
0: जेह प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जेह प्रसाद तेरे सगल सिद्र ढाके,
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके।
0: जेह प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे।
0: जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह,
1: नानक ताकी भगत करे।
0: जेह प्रसाद आप उखन पहरी जय,
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय।
0: जेह प्रसाद अश्व हस्त असवारी,
1: मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी।
0: जेह प्रसाद बाग मिलख तना,
1: राख परोहे प्रभ अपने मना।
0: जिन तेरी मनवंत बनाई,
1: उठत बैठत साध तिसहते आई।
0: तिसहते आए जो एक अलख है,
1: इहां उहां नानक तेरी रख है।
0: जेह प्रसाद करह पुन बहुदान,
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: जेह प्रसाद तू आजार व्यवहारी,
1: तिस प्रभ कौ सास सास चितारी।
0: जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप।
0: जेह प्रसाद तेरी नीकी जात,
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: जेह प्रसाद तेरी पत रहै,
1: गुर प्रसाद नानक जस का है।
0: जेह प्रसाद सुने कर्ण नाद,
1: जेह प्रसाद पेखै बिस्माद।
0: जेह प्रसाद बोल है अमृत रसना,
1: जेह प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जेह प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जेह प्रसाद संपूर्ण फल है।
0: जेह प्रसाद परम गत पाव है,
1: जेह प्रसाद सुख सहज समाव है।
0: ऐसा प्रभ त्याग वरकत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जेह प्रसाद तू प्रगट संसार,
1: तिस प्रभ कौ मूल न मनो बिसार।
0: जेह प्रसाद तेरा प्रताप,
1: रे मन मूड तू

0: साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध कै संग मिटे अभिमान
1: साध कै संग प्रविटे सुज्ञान
0: साध कै संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत निवेरा
0: साध कै संग पाए नाम रतन
1: साध कै संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी
0: साध कै संग अगोचर मिले
1: साध कै संग सदा पर भुले
0: साध कै संग आवे बस पंचा
2: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
2: साध कै संग मनोहर बैन
0: साध कै संग नकत हूं तावे
2: साध संग पावे
0: साध कै संग माया ते भिन्न
2: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत।

0: परमानंद
1: साधक संग नाही हो ताप
0: साधक संग तजै सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बनियाई
1: साधक संग न कबहू तावे
0: साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लाह
0: साधु के संग अजर सह
1: साधक संग बसै थान ऊचे
0: साधु के संग माल पूछे
1: साधक संग दृढ़ सब धर्म
0: साधक संग केवल पार ब्रह्म
1: साध कै संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के करवान
1: साध कै संग सब कुल उधारे
0: साध संग साजन मीत कटम न सारे
1: साधु कै संग सो धन पावे
0: संत के सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध कै संग सो बासुर देवा
1: साधु कै संग पाप पलायन
0: साध संग मत गुण गायन
1: साध कै संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सब जनम
1: साध कै संग नहीं कश काल
0: दर्शन पेट तोत नियाल
1: साध कै संग कलूखत हरे
0: साध कै संग नरक पर हरे
1: साध कै संग इहां उहां सोहेला
0: साध संग विचरत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध कै संग न मिलता जावे
1: पार ब्रह्म साध हृदय बसै
0: नानक उदरै साध सुन रसै
1: साध कै संग सुनौ हर नाउ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध कै संग न मनते बिसरै
0: संग सर पर
1: साध कै संग लगै प्रभ मीठा
0: साधु कै संग कट कट दीठा
1: साध संग पै आज्ञाकारी
0: साध संगत पै हमारी
1: साध कै संग मिटे सब रोग
0: नानक साध बेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जानै
0: साध
1: की उपमा ते हो गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा
1: साध की शोभा ऊचते।

0: मन की बासना मन ते तरह,
1: इंद्री जित पंच लोक ते रहत,
0: नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस,
1: वैष्णो सो जसो परसो प्रसन्न,
0: विसन की माया पे होए भिन्न,
1: कर्म करत होवै निह कर्म,
0: किस वैष्णो का निर्मल धर्म,
1: काहू फल की इच्छा नहीं बचै,
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै,
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल,
0: सब ऊपर होवत कृपाल,
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावै,
0: नानक ओ वैष्णो परम गत पावै,
1: गौती भगवंत भगत का रंग,
0: सगल त्यागै दुष्ट का संग,
1: मानते विंसै सगला परम,
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म,
1: साध संग पापा मल खोवै,
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवै,
1: भगवंत की टहल करै नित नीत,
0: मन तन अर्पै बिस्न तरीत,
1: हर के चरण हृदय वसावै,
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै,
1: जो पंडित जो मन पर बोधै,
0: राम नाम आत्म मैं सोधै,
1: राम नाम सार रस पीवै,
0: उस पंडित कै उपदेश जग जीवै,
1: हर की कथा हृदय वसावै,
0: सो पंडित फिर जो न आवै,
1: नेर प्राण सिमरत बुझै मूल,
0: सुखम मैं जानै असथूल,
1: जो वर्णा को दे उपदेश,
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश,
1: बीज मंत्र सब को ज्ञान,
0: चौवरना में जपै को नाम,
1: जो जो जपै जिसकी गत होए,
0: साध संग पावे जन कोए,
1: कर कृपा अंतर उर तार,
0: पश प्रेत मुगद पाथर को तार,
1: सर्व रोग का औखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम,
1: काहू जुगत किते न पाइए धर्म,
0: नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: तिसका नाम सत रामदास,
1: आत्म राम दिस नजरी आया,
0: दासत संतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास दरगह परवान,
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: तिस दास को सब सो जी पर,
1: सगल संगातम उदास,
0: ऐसी जुगत नानक रामदास,
1: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे,
0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: ऐसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा आनंद तै नहीं बियोग,
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी भिख खाटी,
1: ऐसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान,
1: ज्यो व्रता ऐसा ही जुगत,
0: नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाओ,
1: आपी करन करावन जोग,
0: प्रभ पावै सोई फुन होग,
1: पसरियो आप होय अनंत तरंग,
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे।

0: सलोक उस तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार बिहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी
1: कई कोट मन परम उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट विसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार
1: कई कोट कब का विचार
0: कई कोट नव तन नाम ते आवे
1: नानक करते कांत न भावे
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंधे ज्ञानी
0: कई कोट किरपन कठोर
1: कई कोट भेग आत्म
0: कई कोट पर दर्ब को निरह
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट परदेश बरमाए
0: जित जित लावो तित तित लगना
1: नानक करते की जाने कथा रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रसोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरखन बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट सस्य सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दानव इंद्र से छत्र
0: सकल समग्री अपने सूत धार
1: नानक जिस पावे तिस तिसने सारे
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण समर्थ सास
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चैर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगा
0: सब ते मेरा सब

0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक सुर्ग नवासी,
0: कई कोट जन्म जीव मर,
1: कई कोट बोजोनी फिर,
0: कई कोट बैठत ही खाहे,
1: कई कोट काले तक पाहे,
0: कई कोट किए धनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत,
0: जह जह पाणा तह तह राखे,
1: नानक सब कुछ प्रके आते,
0: कई कोट भय बैरागी,
1: राम नाम संकन लागी,
0: कई कोट प्रभ कौ खोजंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास,
1: को मिलो प्रभ विनाश,
0: कई कोट मांगे सतसंग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
1: नानक ते जन सदा धन धन,
0: कई कोट खाणी अर खंड,
1: कई कोट काश रह मंड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जोग किन्नो विस्तार,
0: कई बार पसरियो पासा,
1: सदा सदा एक कुंकार,
0: कई कोट कीने बहु पांत,
1: प्राप्ते होए ब्रह्मय समात,
0: ताका अंत न जाने कोए,
1: आते आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
1: तिन होवत आत्म प्रगास,
0: कई कोट तत के बेते,
1: सुभाने हारे को नेत्र,
0: कई कोट नाम रस पीवे,
1: अमर पैस सदी जीवे,
0: कई कोट नाम गुण गावे,
1: आत्म रस सह समावे,
0: अपने जन को सास

0: बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत कै दुखन आर जा कटे
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटे
0: संत कै दुखन सुख सब जाए
1: संत कै दुखन नरक में बाए
0: संत कै दुखन मत होए मलीन
2: संत कै दुखन सो बाते लीन
0: संत के हते को रखे न कोए
1: संत कै दुखन दान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जी करे
1: नानक संत संग निंद कभी तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
2: संतन के दुखन काग जो लवे
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए
2: संत कै दुखन त्रिज जोन करमाए
0: संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै
2: संत कै दुखन सबको चलै
0: संत कै दुखन तेज सब जाए
2: संत कै दुखन निजन चाए
0: संत दुखी का थाओ को नाहे
2: नानक संत पावे ताओ विगत पाहे
0: संत का निंदक महा आतताई
2: संत का निंदक खिंतिक न पाई
0: संत का निंदक महा हत्यारा
2: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज देहीन
2: संत का निंदक दुखिया दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
2: संत के निंदक को सदा वियोग
0: संत की निंदा दुख मैं दुख
2: नानक संत पावे ता उसका भी उन्मुख
0: संत का दुखी सदा अपवित
2: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लागे
2: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकार
0: संत का दुखी जन में मर संत के दुखी को नाही ठाओ
2: नानक संत पावे ताले मिलाए
0: संत का दुखी अद बीच ते टूटे
2: संत का दुखी किते काज न पूछे
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइये
2: संत का दुखी उजड़ पाइये
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
2: क्यों सांस बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस नाहे
2: आपण बीज आपे ही खाए
0: संत के दुखी को अवरण रखन हार
2: नानक संत पावे तलै वार
0: संत का दुखी इउं बिल लाए
2: ज्यों जल बिहून मछली तड़पड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
2: ज्यों पावक किंद नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटै अकेला
2: ज्यों मुआड़ दिल के दमाहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
2: संत का दुखी सदमितिया कहत
0: किरत निंदक का तुर ही पया
2: जो सुपावे
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
2: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइये
2: संत का दुखी नाम न जुवाइये
0: संत के दुखी की पूजा न आशा
1: संत का दुखी उठ चले न आशा
0: संत का दुख न त्रष्टै कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पाया किरत न मिटै कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब घट तिसके ओ करने हा
2: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: प्रभु की उस्तत करो दिन रात
2: तिसे ते आओ सास रास
0: सब काश वरत है तिस

0: आपन चले तो आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट,
0: आज्ञाकारी सब श्रेष्ठ,
1: आपे आप सगर में आप
0: अनेक युगत रच थापु।

0: सच करनी सचदा की रहत
1: सच हिरदय सत मुख कहत
0: साची दृष्ट साचा आकार
1: सच वरतै साचा पासार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
1: नानक सो जन

0: राष्ट्रपति।
1: सतगुरु सिख की करै प्रतपाल,
0: सेवक को गुरु सदा दयाल।
1: सिख की गुरु दुर्मत मल हिरै,
0: गुरु बचने हर नाम उचरै।
1: सतगुरु सिख के बंधन काटै,
0: गुरु का सिख बेकार ते हटै।
1: सतगुरु सिख को नाम धन दे,
0: गुरु का सिख वडभागी हे।
1: सतगुरु सिख का हालत पलत सवारै,
0: नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारै।
1: गुरु के ग्रह सेवक जो रहै,
0: गुरु की आज्ञा मन में सहै।
1: को कर कश न जनावे,
0: हर हर नाम हृदय सद त्यावे।
1: मन वेच सतगुर के बास,
0: तिस सेवक के कार्य रास।
1: सेवा करत होए निकामी,
0: तिस को होत प्राप्त स्वामी।
1: अपनी कृपा जिस वाप करे,
0: नानक सो सेवक गुरु की मत ले।
1: बीस बिस्वे गुरु का मन माने,
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने।
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ,
0: अनेक बार गुरु को बल जाओ।
1: सर्व निधान जी का दाता,
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता।
1: ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म,
0: एक है आप नहीं कश परम।
1: रहस्य अनप ले न जाइए,
0: नानक ऐसा गुरु भागी पाई है।
1: सफल दर्शन बेखद बुनीत,
0: पर सत चरण गात निर्मल रीत।
1: भेटत संग राम गुण रवे,
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे।
1: सुन कर वचन करन आगाने,
0: मन संतोख आत्म पतियाने।
1: पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र,
0: अमृत दृष्ट पेख हुए संत।
1: गुण में अंत कीमत नहीं पाए,
0: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए।
1: जेवा एक उस्तत अनेक,
0: सत पुरख पूरन बाबे को।
1: काहु बोल न पहुँचत प्राणी,
0: अगम अगोचर प्रभ निर्बानी।
1: निराहार निर्वैर सुखदाई,
0: ताकी कीमत के न पाई।
1: अनक भक्त बंधन नित करै,
0: चरण कमल हृदय सिमरै।
1: सदवलियारी सतगुरे अपने,
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।
1: एहो

0: मन मैं राखे हर हर एक
1: अंधकार दीप प्रगासे
0: नानक भरम मोह दुख तहते नासे
1: तप्त माहे डार बरताई
0: आनंद भया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंधे से
0: साधु के पूरन उपदेसे
1: चुका निरपा होए वसे
0: सगल बे आद मन देखे नसे
1: जिसका साथ इनकर पातारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: चित भाई चूके प्रम गवन
0: सुन नानक हर हर जस श्रवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
0: कलाकार जिन सगली मोही
1: अपने

0: तमीत कुटुंब अर बनता
1: को तुम प्रवंचनाचा
0: राज रंग माया विसथार
2: को कुन छटकार
0: अस्वहस्ती रात अश्वारी जन दिए तिस बुझे ना बेगाना गुर की मत तू लेहे आने हर की भगत करो मन मीत
2: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल राखू मन माहे
2: जन्म जन्म के किल विक जाहे
0: आप जपो अबरा नाम जपावो
2: गत पावो
0: सार भूत सत हर को नाओ
2: सुवाए नान गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतर समैल
2: जाए हो मैं बिक पैल
0: होहे अचिंत बस सुख नाल
2: सास ग्रास और नाम समाल
0: शाड सियानप सगली मना
2: सास संग पावे
0: हर पूंजी सांच करो व्यवहार सर्व निरंतर एको देखो
1: नानक जाके मस्तक लेखो
0: एको जापो एको सालाहे
2: एक सिमर एको मन
0: एक सके गुण गाओ अनंत
1: तन जाप एक भगवंत
0: एको एक एक हर आ

0: जब कार हो काश ना दृष्टेता
1: आप कुल तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संग समात
0: जब इसका वर्ण जहन ना जापत
1: तब हर्क सोग कह किसे व्यापत
0: जब आपने आप पार ब्रह्म
1: तब भोग कह किस होवत परम
0: आपन खेल आप वर्तीजा
1: नानक करने हार ना दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल धनी
1: तब बंद मुक्त कह किस
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुरग कहो कौन अवतार
0: जब नर गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब सिर सख्त कहो के कठाए
0: जब आप है आप अपनी जोत सरह
1: तब कवन निडर कवन कत डर
0: आपन चलते आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अबरासी सुख अपने आसन
1: कहे जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो के
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एक
1: तब चित्र गुप्त के सूचत।

0: निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: सह बिन मैल कहो क्या तोता
0: सह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: सह कौन कौ मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: सह शाल शुद्र लगत कहो कीस
0: यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव
1: सह किसह भूप कवन त्रिपताव
0: कर्ण करावन कर्ण हार
1: नानक करते का नाहे सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: सब कवन माए बाप मित्र सोत पाई
0: यह सर्व कला आप है परवीन
1: कह वेद कतेव कहा कोचीन
0: जब अपने आप आप और सार
1: सगन अप सगन कहा।

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म,
1: संत जना का हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने शुभ बचन,
1: सर्व व्यापी राम संग रचन,
0: जिन जाता तिस किए रहत,
1: सत बचन साधु सब कहत,
0: जो जो होए सोई सुख माना,
1: कर्ण करावन हार प्रभ जान,
0: अंतर बसे बाहर पी ओही,
1: नानक दर्शन देख सब मोही,
0: आप सत किया सब सत,
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत,
0: किस भावै ता करे विस्थार,
1: जिस भावै ता एकंकार,
0: अनक कला लखी नह जाए,
1: जिस भावै तिस लय मिलाए,
0: कवन निकट कवन कहिया दूर,
1: आपे आपे आप भरपूर,
0: अंतरगत जिस आप जनाए,
1: नानक तिस जाने आप बुझाए,
0: सर्व भूत आप वरतारा,
1: सर्व नैन आप वेखन हारा,
0: सगल समगरी जा का तना,
1: आपन जास आप ही सुना,
0: आवन जान एक खेल बनाया,
1: आज्ञाकारी कीनी माया,
0: सब कह मद अलिप तो रह,
1: जो कहि कहना सो आपे कह,
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
1: नानक जा पावै ता लै समाए,
0: इसते होए सो नाही बुरा,
1: औरा कहो कने कछ करा,
0: आप भला करतूत आतनी की,
1: आपे जाना अपने जी की,
0: आप साच धारी सब साच,
1: पोत पोत अपन संग राच,
0: ताकि गत मित कही न जाए,
1: दूसर होए तसो जी पाए,
0: किसका किया सब परवान,
1: गुर प्रसाद नानक हो जान,
0: जो जाने तिस सदा सुख होए,
1: आप मिलाए लय प्रभ सोए,
0: ओ धनवंत कुलवंत बतवंत,
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
0: धन धन धन जन आया,
1: जिस प्रसाद सब

0: राम नाम सुन रसना कहते
1: प्रसाद दया प्रवतारी
0: नानक निभि खेप हमारी
1: सबके औसत करहौ संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: रुक्मणि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसै सो हो ते निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सबसे ऊज पाए स्थान
0: बहुर न हो वै आवन जान
1: तन खाट चला जन सोए
0: नानक जसै प्राप्त होए
1: प्रेम साध रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास
0: सब कै मद

0: सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं तो प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के
1: सोर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के
0: ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा।

0: साहेब सरी सब को सर नायक जाचकन एक सोए गदवैया
1: दानव देव पनिंदन साचर भूत भवेख भवान जपेंगे
0: जीव जत जल में थल में पाल ही पाल में सब थाप थपेंगे
1: पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
0: साब समूह प्रसन्न पर जाग सतर सब

0: पूर गया और जो सब ही जग भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: दसवीं कभी बात बेनती चौपाई हमारी।

0: कृपा हन अनमानत
1: महा मोड़ काज भेद न जानत
0: देव को कहत सदा सेव
1: निरंकार का जीनत नह पैव
0: अपनी बुद्ध है जेती
1: वर्णत पैद पैद तुहले
0: तुमरा लखा न जाए पसारा
1: कह बिद सजा प्रथम संसारा
0: कह रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग पै राव कई भूपा
0: जे रस्ते चगिनी।

0: मान जाओ प्या प्रव्यागम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया
1: हर गाओ मंगल ने सखी शोक दुख न व्यापे
0: गुर चरण लागे दिन सपाके आपना पर जापे
1: अनहत बाणी गुरु

कला बख्शिश करके नवाजना, गुरमत अनुसार समूह संगत दियां अरदासां बेनतियां आप जी ने दर ते प्रवान कर लैनियां। सतगुरु जी अपने टहलियां सेवादारां दे सिरां ते मेर भरिया हथ रखना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा, श्रद्धा भावना प्रीत अदब सहित अपने दर घर दी सेवा दे योग बना लेना। सतगुरु जी चढ़दी कला बख्शिश करनी, हर मैदान फते बख्शिश करनी, अंग संग वर्तना गरीब नवाज। इस वक्त आप जी के हजूर दीवाना नूं संपूर्ण मुख रखदिया होया आप जी के हजूर

पांच मिनट का समा है, एक छोटा जा शब्द दो अंतरियां दा, आओ सारे राग गूंड विच मुको तार ले रामा तार ले, इसका कीर्तन करिए।

कीर्तन राही महाराज जी दे तुरकी बाणी दे शब्द राही आपां भी परात विच शामिल हो सकते। महान रूहां साईं मियां मीर जी बराती भी वेखो कैसे, भाई शालों जी, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, जेड़े रब वर्गी हो गए, जिन्हां दे बराती ऐसे ने ते गुरु किड्डा महान हो। बिलगे दी आस पास दी ओ धरती तन है जिथे जिथे महाराज ने चरण पाए, खुशियां अज भी उन्हां दे व्याह पुरब ते लड्डू बना के संगतां वंडदियां ने एक दूजे, और कहंदियां ने धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह साडे घर परिवारां विच बच्चियां दी खुशियां देण वाले भी तां तुसीं। भावना बना के एक बारी गाओ, सतगुरु सानू अपने चरणां नाल जोड़ के रखे, तेरे व्याह दियां खुशियां साडे जीवन ते हमेशा असर बना के रखन। नाम बंदगी भजन प्रेमा भगती ईरखा द्वेष छड़ के प्यार ही प्यार रहे।

जिन्नी भी संगत बैठी है एक बार सारे गाओ, जिन्हां दी रसना ते ये पावन वचन भी गुरु अर्जन देव जी का है, वो रसना भागा वाली बन जाती है। सुते हुए कर्म जाग जाते, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाए। जिवें शरीर दियां लोड़ां ने ना, जल पानी प्रशादा तेरी रूह की खुराक यही है, अपनी आवाज नाल गा के हाजरियां लवाओ। समा समाप्ति वल है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सदाई बाणी दा नितनेम दा गुरु करनाल प्रेम प्यार बनया रहे, तेरे दर्शन करके फिर कारोबार ते जाए।

कहे कबीर मोह ब्याह चले है पुरख एक भगवान तंतन सहे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज माता गंगा जी तिना दे सुख आनंद कार दी समूह सात संगत नूं दास दे जत्थे वालों लख लख वधाई होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुईआं भुलना चुका दी खिमा आओ अगले प्रोग्राम सरवण करी सत्कार योग भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी उन्हां पासों अगले कीर्तन सरवण करी जी दस वालों फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: इतनी सेवा परिवार करण जी फुला चुका खेमा औट कार्य भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी दरागे जथे पासों पावन पवित्र कीर्तन शरण करिए जी बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन गुरु
1: Gracias.